हूँ मैं, सरापा बुरा और गंदा हूँ मैं, बहुत सख्त मुजरिम कमीना हूँ मैं, गुनाहों का गोया खजीना हूँ मैं। से टू अल्लाह तबारक व तआला, स्पीक टू अल्लाह तआला, इलाही गुनहगार बंदा हूँ मैं, सरापा बुरा और गंदा हूँ मैं, आई एम द फिल्थीएस्ट द डर्टीएस्ट, नजासत गिलाजत खवासत हैज फिल्ड माई हार्ट। वी आर स्पीकिंग टू अल्लाह ताला, वी आर नॉट टेलिंग द वर्ल्ड, या अल्लाह दिस इज माई कंडीशन। बहुत सख्त मुजरिम कमीना हूँ मैं, गुनाहों का गोया खजीना हूँ मैं, आई मीन एपिटमी ऑफ सिंस, माइन ऑफ सिंस, न कुव्वत गुनाहों से बचने की है, न हिम्मत अमल नेक करने की है, न कुव्वत गुनाहों से बचने की है, न हिम्मत अमल नेक करने की है। टॉकिंग अबाउट तौफीक, नाउ वी से इट फॉर अल्लाह तबारक व तआला, आई जस्ट डोंट सीम टू हैव द कुव्वत एंड स्ट्रेंथ टू गिव अप दिस सिंस ऑफ माइन, सो मच आई लिसन, सो मच आई लिसन, बट इज बैक टू स्क्वेयर वन। न कुव्वत गुनाहों से बचने की है, न हिम्मत अमल नेक करने की है, डोंट इवन हैव द हिम्मत टू डू नेक अमल, गुड डीड्स। तेरा हो इरादा अगर ऐ करीम, तो हो पाक पल में ये बंदा लईम, तेरा हो इरादा अगर ऐ करीम, तो हो पाक पल में ये बंदा लईम, तू ही गैब से कोई सामान कर, गुनाहों से बचने को।

पल में ये बंदा लईम, तू ही गैब से कोई सामान कर, गुनाहों से बचने को आसान कर। माय बिलवड अल्लाह, इफ यू मेक योर इरादा देन विद इन द विंक ऑफ एन आई एंड द ब्लिंक ऑफ एन आई आई विल गेट पाक। नाउ फ्रॉम गैब क्रिएट सच कंडीशंस, तू ही गैब से कोई सामान कर, गुनाहों से बचने को आसान कर। मेक इट ईजी फॉर मी टू सेव गार्ड माई सेल्फ फ्रॉम सिंस, गुनाहों से बचने को आसान कर। द सेम डिस्कशन ऑफ तौफीक, कीप इट माइंड दैट वी आर आस्किंग अल्लाह तबारक व तआला टू मेक इट ईजी टू डू द गुड डीड एंड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू गो टूवर्ड्स दैट विच इज हराम एंड सिन। मैं बंदा तेरा हूं महज नाम का, बना दे करम से मुझे काम का।

मुझ सा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझ सा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

कैसी मंजिल पे आ गए हैं, न कोई अपना न हम किसी के। हा माय अल्लाह, व्हाट अ मंजिल वी हैव कम टू, नाइदर आर वी ऑफ बेनिफिट टू एनी वन एंड नो बडी ऑफ एनी बेनिफिट टू अस। द मुस्लिम हु वॉज सपोज टू बी ऑफ बेनिफिट टू द एंटायर मैनकाइंड, टूडे ही इज नॉट इवन ऑफ बेनिफिट टू हिज ओन फैमिली, हिज ओन वाइफ, हिज ओन चिल्ड्रन, इफ यू हैव टू लिसन टू द केसेस ऑफ अब्यूज। And as far as the Muslim Ummah is concerned, if you see some friendship of the outside world with the Muslim Ummah, then it is nothing but hypocrisy. Saudi Arabia was the blue-eyed boy of the American government. What happened? Iraq and so many other places in the world. What happened? Our trust that we placed in these idols did not help us in any way. Ye kaisi manzil pe aa gaye hai, na koi apna na hum kisi ke. Nothing but destruction, destruction. Nothing but causing hurt, injury, pain to others. Tum apne daaman mein aa jaa aqa, tamam apne ghulam le lo. ये दिल में अरमा है अपने तैयब,

0: तो बस अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। डोंट वेट फॉर द डोर टू ओपन, यू कीप नॉकिंग एट द डोर, समडे द डोर विल ओपन। If a person keeps knocking at the door, then you say, all right, just open and ask that person, what does he want? Allah tabaraka wa ta'ala will mean, he'll open the door, he'll open it full. There'll be no such thing as little to check that if there's a burglar there. Allah ta'ala is not going to be scared of any burglars. When he will open the door, it will open full. Baithega chain se agar kaam ke kya rahenge par, गो न निकल सके मगर पिंजरे में फड़ फड़ाए जा। अल्लाह हैज गिवन अस विंग्स, ही सेज यू गॉट विंग्स, यू हैव बीन एनक्लोज्ड, यू हैव बीन एनकेज्ड। नाउ इन द केज इफ यू गोइंग टू जस्ट सिट, नथिंग विल हैपन। कीप ऑन फ्लैपिंग योर विंग्स, समबडी पासिंग बाय मे से नाउ दिस थिंग इज सफरिंग इनसाइड, ओपन द केज एंड लेट इट गेट आउट।
1: तौबा करे गुनाह से लेकिन हो सिद्दक़ दिल से भी, हश्र में होंगे फायज़ों, बीबियां होंगी फायज़ात।
0: देन ऑन क़यामत डे द मेन विल बी सक्सेसफुल, द वुमेन विल बी सक्सेसफुल, द चिल्ड्रन विल बी सक्सेसफुल, हैप्पी, प्लीज्ड, दे विल गेट विक्ट्री, they will get entry into Jannat. Just that little effort for a few years in this world. And the effort also is not for anyone else's benefit, it's for our own sukoon, for our own peace, for our own comfort.

अरे ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, अपना बना ले, अपना बना ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह।

नाम शिरोषकर्मी शवद जानम तमाम अल्लाह अल्लाह इचे शीरिनस्तनाम शिरोषकर्मी शवद जानम तमाम।